0: थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345923280 0300-585-8481।
1: आसमानी हर्बल ऑयल 100% ऑर्गेनिक न्यू हेयर ग्रोथ। खाने के फवायद, जिस्म की इजाफी चर्बी और मोटापे को कम करे, ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे, मर्दाना कमजोरी को दूर करे, हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे, मैदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे, बवासीर, खूनी उबादी, कब्ज और मतली में मुफीद है। मालिश के फवायद, सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात, बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए, खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए, बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे, फालिज के मरीजों और हर कसम के जख्म के लिए भी मुफीद है, जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर कसम की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट अस 0345923280।
0: आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम, कुदरती अज्जा से तैयार करदा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम का रोजाना इस्तेमाल आपके चेहरे को बनाए तरोताजा। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे, कील मुहासे, छाइयां और आंखों के गेट स्याह हल्के खत्म करे, आपके चेहरे, गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मौजूद असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला मुनफरद खुशबू और विटामिन्स दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345923280 0300-585-8481।

0: रिजल्ट बगी मौजूद है खाजी।
1: तो हम हमेशा मोरे जड़े दी मोरे माता पार तकलीफ
0: आओ सेवक खबर उसी आसमानी
1: दी मोरे माता पार तकलीफ न दे तेर केड़ी दी मोरे डेर
0: दुर्गाखुन पाउडर हवाले सर आसमानी राइस फेस वॉश होता सलमा जिक्र को आसमानी राइस ब्यूटी क्रीम हम तासो पेजन उस तखायु छ आसमानी हर्बल टूथ पाउडर दगाखुन सफाई दफारा गाखुन जिड़शिवी तुरशिवी वीन कवि या बरीख कवि आसमानी दगाखुन पाउडर हम तासो इस्तेमाल वाला छी यो डेर जबरदस्त खुल रिजल्ट दे जी और देने लवा से बस बंगा आसमानी सन ब्लॉक हम तासु इस्तेमाल वाला छी आसमानी हेयर रिमूवर क्रीम हम तासु मार्केट की मौजूद आसमानी ब्यूटी सीरम हम जी आसमानी ब्लीच द अनार वाला आसमानी ब्लीच द राइस वाला आसमानी ब्लीच 24 कैरेट गोल्ड ब्लीच हम तासु इस्तेमाल वाले छी जी यो डीर जबरदस्त कुली और बेहतरीन रिजल्ट दे जी ब्लीच हो बता सुडीर इस्तेमाल करी हो वारे आसमानी निमानी तासु ब्लीच इस्तेमाल की तासु तपत हो लेकिन आसमानी ब्लीच सुमर जबरदस्त रिजल्ट दे खा औसे बदीन लवक खबर उशिद आसमानी मुल्तानी मिट्टी और आसमानी अर्जन पेशल अनार वाला हम तासु इस्तेमाल वाले छी जी डीर जबरदस्त कुल रिजल्ट दे जी आओ दा कशान सेबक खबर उशी जबंग आसमानी हर बल आयल हवाले सर आसमानी थी कुरानी करीम फाया थुन दम कले शिवी परी की कलवंजी दा परी की सेतून दी परी की बेहतरीन जड़ी बूटिया और बेहतरीन कुदती हर बल आयल जी आसमानी हर्बल आयल द शुगर द पारा द ब्लड प्रेशर द पारा कोलेस्ट्रोल पारा जी बाज खल को खुद मेदी से खम देते थे बद हजमी द निजाम इन्हजाम के मसल कबज मसला बवासिर मसला खूनी बवासिर या बादी बवासिर आसमानी हर्बल आयल इंतखाब के वले छी जी और हर किस्म दर्दों द पारा बतौर मसाज बतौर मालशम तासु आसमानी थे इस्तेमाल वले छी जी आओ दगा चने लेखूरिया द पारा जख्म द पारा रसूल द पारा हम आसमानी हर्बल आयल डीर बेहतरीन दी आओ खबर उशी आसमानी हर्बल आयल बाज खलक जमुखर सर वख्तानों की खुशकी सर वख्तान में ग्रोथ न के सेहतमंद न दी नुसू कुआ आसमानी हर्बल आयल और आसमानी प्याज शैम्पू आसमानी एलोवेरा शैम्पू या आसमानी राइस शैम्पू तासु इस्तेमाल की इनशाला डीर को लिए बेहतरीन रिजल्ट हासिल छे ठीक छू जी द मौजू आगाज को बस ये गर्ज दल कहू जमुख सुमर हम प्रोडक्ट्स दी आगे बने वे द पास आसमानी नुम लिखले का आसमानी नुम भी नहीं नगोरे जमुंग सर हिस किस्म ताल्लुक निश्ता आसमानी नाम लेकर ही तलब करे आसमानी नाम ही काफी है द मौजू आगाज को जी दरेजल दुरूद शरीफ दरेजल सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद सूरत हुई फौरन द मौजू आगाज को जी।

0: बस इसका कोई सब इलाज सब चीज इसमें ही है जो बयान करते हैं आप। बस
1: अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमाए। माशाल्लाह आपने हमारा दिल खुश कर दिया, अल्लाह ताला आपको खुश करे जी।
0: आज रात का बयान नहीं किया आपने?
1: जी वो तो बस मैं जुमेरात और जुमे को होता हूँ ना, वहाँ 10 बजे जो मेरा प्रोग्राम होता है आप लोगों के लिए, वो जुमेरात और जुमे के दिन होगा FM 103 कश्मीर रेडियो पे। बाकी आप

हाँ बिल्कुल जनाब, दैट एफएम 88.4 रेडियो मन बटग्राम मात वेलेशी निजाम सईद अवतासु तसवेलेशी दावतासु

और बर्तोड़े की बताओ उसने मिलावेगी। मोइन जनरल स्टोर एंड होलसेलर मेन बाजार ताकोट की बिलावेगी। शिनाज जनरल स्टोर पुल बाजार ताकोट की बिलावेगी। ताउस्ता सरहद शॉपिंग सेंटर पिपले बाजार मेरठ की बिलावेगी। ताउस्ता पाकिस्तान मीनारी सेंटर मेन बाजार बिशाम की बिलावेगी। गुलाम कादर मार्केट बादर खान सर बिलावेगी। साहिबजादा अब्दुल रऊफ मटा स्टॉप की बिलावेगी। ताउस्ता नीली शंग स्टॉप चिकुम दे मटा। कराची गारमेंट लेडीज मार्केट छतर। शाजी गारमेंट लेडीज मार्केट छतर अलतब मिलावेगी। योजले जरूर इस्तेमाल के पकुजाबांडा की तस्तों मिलावे देश या तमामद मीनारी सेंटर उगे रोड कुजाबांडा। थ्वेब जनरल स्टोर नेस कुजाबांडा पेट्रोल पंप। अनवर कॉस्मेटिक्स हुसैनी मार्केट दुकान नंबर एक शर्मा मत सर्व मिलावेगी। पावर एक्स एसेट गो। लेडीज मार्केट मेरा की मिलावेगी। था उसका मलकाल मेडिकल स्टोर लेडीज मार्केट मेरा। बटू कॉस्मेटिक्स लेडीज मार्केट मेरा। असब कॉस्मेटिक्स मेरा। सदाम शॉपिंग सेंटर लेडीज मार्केट मेरा। अबेद शाह कॉस्मेटिक्स लेडीज मार्केट मेरा। अलई की बतास तुम मिलावेगी लेडीज मार्केट गले नंबर टू नज जुनेद खान स्टोर। हैदर शॉप दुकान नंबर एक दुकान नंबर दो अलई बना। जमुच सुमरा अलई खलक और आवाज नो अगूता दरख्वास्त चलता लाड़शी हैदर खान ख्वाता और जुनेद खान ख्वाता पबाना की। देने अलावा बताओ तो मिलावेगी द बांडे जानजेब सरब मिलावेगी। था जायद मेडिकल स्टोर चिनार मोड जहांगीराबाद की मिलावेगी। था जैदुल्ला शाह सरा हाजी सिराज दुकानदार जहांगीराबाद की बताओ तो मिलावेगी। दसरबार किस्म पराड़े को मिलावेगी और पावर एक्स एसेट गोबा मिलावेगी हाजी सिराज जहांगीराबाद। वाजिद मेडिकल स्टोर जबा डॉक्टर कादिर शाह सर बतास्तों मिलावेगी। हमजा जनरल स्टोर गुलडेरे कला अलतब मिलावेगी। सुमर चिर कला कुआड़ खलक दिए खड़ गए खलक ये नो अल तलाश है। हमजा जनरल स्टोर गुलडेरे कला। गिजबोड़े सरखेले बांडा इंजर पेजा मेडिकल स्टोर की बोमतास्तों मिलावेगी। बर्तोने बरखड़ शाम अदत खान सरब मिलावेगी। ताउस्ता बर्तोने के जैन मेडिकल स्टोर बटाग्राम के बतास्ता मिलावेगी। जैन मेडिकल स्टोर ननिया मोड़ सुमरच द बटाग्राम कली खलक ये गया कालू नैन अगातासु जैन मेडिकल स्टोर तुम प्लेश है ननिया मोड़। दात खान जनरल स्टोर के बतास्ता मिलावेगी रहीमाबाद की सरदलिया मोड़ ना आखवा। दात खान जनरल स्टोर जबा दबांडी स्कूल सर बिलाल अहमद जनरल स्टोर के बतास्त मिलावेगी सेराई। दबांडी स्कूल में सरा बिलाल अहमद जनरल स्टोर अल तलाश तो बिल्कुल जनाब दा बतास्त हर ख मेडिकल स्टोर जनरल स्टोर के मिलावेगी। हुकुम से तजमु माल नहीं रसीद ले नासो मुसर राबेतौक है। तासो मुहसिन शाह सर राबेतौक है जमंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर दे जेल मोड़ की दुकान दे दरमान होम्योपैथक सरा। नंबर नोट के 0311-158-7745। टोल दुकानदारान मेडिकल स्टोर कॉस्मेटिक स्टोर वाला और सर राबे तो के 5% डिस्काउंट सर बताओ तो दर कभी दुकानदारान होता यो जल जरूर राबे तो और सरो के नंबर बयान नोट के 0311-158-7745। चाहता माल नहीं रसीद ले ऐसा मसल भी नासु मोहसिन सर राबित हो के डेर खा इंसान दे डेर इखलाकी दे और तासु तब माल रसवी या तासु पखपल अराशाई यो जले जरूर इस्तेमाल करे। डेरा मनना कौम का जमुदी खुलीदास से खबर खतली भी तासु दिल दारी शिव बखना ग्वाड़ू दा प्रोग्रामो पावर एक्स और इसेट गो दे तरफा और दे सरा सरा सिंह चीमा लाउल नवे ब्याम तास्तवेम सत नवाखला तर नो पूरे इश्तिमा दा लाउल न दा बटाग्राम दा लाकू नंबर दे आगे न बाद बेद सैडुनो राबेतावर सरा ओके और दा इश्तिमा कामयाब गए। मंगुम दो वागानो की याद सहते जमुंगा ची सुम्र रुण खुएं दी जमुंगा आवाज अवरी दवागानी ओके चल्ला पाक दी दा कामयाब की।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
6: ग्रानो रिदुन को द अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम दे दा वक्तासो जमुंगा इस्लामी नशरियात आवरे।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बत।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेके।

मैं मॉडल वर्ब हम किस लिए यूज करते हैं? सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी इम्कान के लिए यूज कर सकते हैं, करते हैं, और सेकंड नंबर पे हम परमिशन किसी इजाजत मांगने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, हेडिंग आप लोगों ने दे दी, फिर मैंने आप लोगों को तो ओ यार क्या करे यार, लिख लो ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं वी हैव टू यूज फॉर टू थिंग्स। मॉडल वो मैं वी हैव टू यूज इन सेंटेंस फॉर टू वेज। पॉसिबिलिटी पी ओ डबल एस आई बी आई एल आई टी पॉसिबिलिटी, एंड द सेकंड थिंग्स वी हैव टू यूज मे इन सेंटेंस फॉर परमिशन पी ई आर एम आई डबल एस एन परमिशन परमिशन। अच्छा आगे बढ़ते हैं, खबर से कम चिमंग सरा मॉडल वर्ब के सेकंड नंबर की इस्तेमाल जुमले के इस्तेमाल इम्कान लरू मिसाल बाबा के बंदे पोश यो या मंगा दान इजाजत खरु मैं मंग कम जी के इस्तेमाल हुआ याद यो खबर इम्कान लरू शायद हो सकता है के दलाई या मंगा देव का स इजाजत खलु अखीर पारा मंगा से दमे इस्तेमाल का हुआ। उठ दे जब हमें किसी काम के होने का इम्कान हो तो हम में इस्तेमाल करते हैं। जब हमें किसी काम के होने का इम्कान हो तो हम में इस्तेमाल करते हैं। वी से द थिंग्स दैट प्रोबेबली विल बी डन, यानी किसी काम के होने के इम्कान के लिए दियोकार के दिलो द इम्कान द पार मंग इस्तेमाल में। सरंगी मिसाल सरवाज हकोमा उर्दू के लिखे, जब हमें किसी काम के होने का इम्कान हो तो हम में का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वी प्रोबेबल थिंग्स दैट विल बी हैपन, व्हेन वी से दैट प्रोबेबली प्रोबेबली हम कह सकते हैं हो सकता है या गालिबन हम कह सकते हैं। प्रोबेबली प्रोबेबली पी आर ओ बी एल वाई प्रोबेबली प्रोबेबिलिटी भी हम कह सकते हैं। अच्छा, यानी हम किसी चीज के बारे में कह सकते हैं गालिबन हो सकता है या नहीं हो सकता है। जब हमें किसी काम के होने का इम्कान हो तो हम में इस्तेमाल करते हैं। When we probably saying about something that will be happen in the future, may or not हो सकता है यानी। अच्छा, तो कैसे मिसाल एक सरबाजी कहते आप लोगों ने लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं, एक मिसाल लेते हैं। हम किसी को कहते हैं कि शायद कल बारिश हो सकती है, कल बारिश हो सकती है, तो चलिए मिसाल लेते हैं। आप लोग मिसाल देता हूं। एक बात याद रखिएगा, जब हम सबसे पहले आई थी इट का इस्तेमाल करते हैं, जब हम वक्त की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, इट का हम इस्तेमाल करते हैं। और जब हम नाउन में बात करते हैं इट हम किसके यूज कर इट हम यूज करते हैं जो हमारे पास नॉन लिविंग थे, इसके लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर मैं क्यों इट लगाऊंगा, इट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम बात करें कल की बात करें तो हमारे पास मुद्दत आ गया ना, दिन आ गई ना, कल क्या कल का। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हमें इट लगाएंगे आई टी इट एम ए वाई में आर ए आई एन रेन टी ओ एम ओ डबल आर ओ आई टुमारो इट मे रेन टुमारो। आई रिपीट अगेन, आई टी इट एम ए वाई मे आर ए आई एन रेन टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू इट मे रेन टुमारो इट मे रेन टुमारो इट मे रेन टुमारो। तो हम उर्दू में किस तरह कहेंगे कि हम इस तरह कहेंगे कल बारिश हो सकती। सबसे पहले हमें हम इन से लेते हैं, तर्जुमा हम किस तरह करते हैं, हम इन से लेते हैं। अच्छा, तो किस तरह कल बारिश हो सकती है, मैंने कहा था ना कि पॉसिबिलिटी का हम यूज पॉसिबिलिटी के लिए हम मे मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तब समाधा वील यू कहना इम्कान लरुलु द पार मंगा द मॉडल वर्ब में इस्तेमाल को मंगे था से मिसाल रख इट मे रेन टुमारो कल बारिश हो सकती है के देशी सबा बारानवी के देशी सबा बारानवी। आगे बढ़ते हैं,

अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही एच ई ही एम ए वाई में बी ई बी एट ही एट एच ओ एम ई होम, ही मैम बी एट होम, वो घर पर हो सकता है, वो घर पर हो सकता है। मैं अभी नहीं कह सकता कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को उठाया, फिर उसके बाद हमने मार्टर वर्ब को उठाया, फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि हम आने की बात कर रहे हैं, अपॉलोजी, हमने कहा कि ये हमारे पास बी जो है ये हम किस लिए यूज करते हैं, जब हम प्रेजेंट अपॉलोजी हम फ्यूचर कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो हम इसके लिए यूज करते हैं, और एट हम स्पेसिफिक एरिया की जब हम बात करते हैं, और होम यानी हम यहाँ पर होम की बात करें, तो इतने ज्यादा डिटेल के साथ मैं इतने ज्यादा डिटेल के साथ जाऊंगा तो फिर हमसे वो क्या कहते हैं टॉपिक वो रह जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ही मैं भी एट होम, वो घर पर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एस एच ई शी एम ए वाई में सी ओ एम ई कम टी ओ डी ए वाई टुडे, शी में कम टुडे, वो आज आ सकती है। हमने ये नहीं कहा कि वो आएगी, शी विल कम टुडे, हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा शी में कम टुडे, वो आज आ सकती है, मे बी वो ना आए। हम अक्सर यूज करते हैं ना मे बी, हो सकता है, और इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं, और परहैप। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। नेक्स्ट, यानी हम मे का इस्तेमाल करते हैं शायद मुमकिन है, शायद मे पहुंचते मे भी हो सकता है, यानी मे जो हमारे पास है हम कह सकते हैं मैं भी मुमकिन हो, हम कहते हैं कि पॉसिबल है, हो सकता है, मे बी और नॉट। ओके तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, वन पॉइंट मेरे ख्याल से आप लोगों को मुकम्मल समझ में आया होगा, आई थिंक आई गेट इट माय पॉइंट। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पे, हमारे पास में हम इस्तेमाल करते परमिशन के लिए, में हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, में हम इस्तेमाल करते हैं परमिशन के लिए। अच्छा और मैं हम इस पर यहाँ पर एक और बात भी मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कि जब हम मे की बात करें तो हम फॉर्मल यानी हम टीचर को जब हम कहते हैं या हम अपने दोस्तों में ज्यादातर मे का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हम अदब या हम बाअदब किसी को समझाने के लिए जब हम यूज करते हैं तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह, यानी जब हम कहते हैं मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता, सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना होगा कि मे, वी यूज मे फॉर परमिशन, वी मे यूज फॉर परमिशन, फॉर परमिशन। अच्छा मे इजाजत मांगने के लिए इस्तेमाल होता है, मे इज यूज फॉर परमिशन, आसान शब्दों में मे एम ए वाई मे, यू एस ई डी यूज एफ ओ आर फॉर पी ई आर एम आई डब्ल्यू एन फॉर परमिशन, मे इज यूज फॉर परमिशन, हम इजाजत मांगने इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आप लोगों ने जहन में बिठानी है कि जब हम ये इससे ज्यादा फॉर्मल यानी हम अदब के लिए हम जब किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, वी यूज फॉर द मोर फॉर्मल एंड मोर रिस्पेक्टेड फॉर अवर रिस्पेक्टेड पर्सन लाइक अवर टीचर एंड लाइक अवर कंपनी बॉस। ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा मिसाल देते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मे को लेंगे, फर्स्ट वी हैव टू यूज मे देन सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब एंड देन व्हाट आर टॉकिंग अबाउट, सो वी हैव टू यूज प्रीपोजिशन। ओके मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे एम ए वाई मे, आई सी ओ एम ए कम आई एन एन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, कैन भी हमने यूज किया, लेकिन किन हमने कहा कि किन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये जो है ये फॉर्मल यूज होता है ज्यादातर, हम जब किसी बड़े को कहते हैं, हम टीचर कहते हैं मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, जब हम किसी को कहते हैं क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ, अच्छा इंग्लिश में इसको किस तरह कहेंगे, क्या मैं आपका फोन, या हम किसी फोन मांगते हैं उसके तो हम किस तरह कहेंगे, कैन आई गेट योर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर अलग बात है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि जब हम किसी कहते हैं क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूं तो हम किस तरह यूज करेंगे, सबसे पहले हम मे को लेंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट आई इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद हम किसके लिए फोन मांग रहे हैं, हम इससे

आज हमारे सवाल है, मेरा मतलब ये है कहने का कि बड़ग्राम के सर अभी कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम ना पढ़े तो आगे क्या होगा, वहीं आप लोगों ने भी सोचना होगा। हम अक्सर इस तरह करते हैं कि कोई काम हम कर जाते हैं, फिर हमें रिजल्ट का नहीं पता होता कि आगे क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा। हम सिर्फ वो सिर्फ बिगनिंग को देखते हैं कि शुरुआत हमने कैसे की, फिर हमने छोड़ दिया, बस छोड़ दिया बात खत्म, लेकिन आखिर में नतीजा क्या खज होगा, नतीजा क्या निकलेगा, तो हम उसको नहीं देखते थे, इसलिए हम नाकाम होते। ओके, हमारे पास वो क्या कहते हैं कि बिल्कुल कम है जब आदम ने बड़े नाम से मिच सुनाम खल करी कम खल कची तालीम न खावी आगा मशुमान छे कोई दवाई समाड मुकमल माछे वे देनु लाजिमन रेडियो अमन ता चक्कर राहुल गवे माल सिर्फ और सिर्फ 750 मिनट बकार दे के कायल मैंने करे और रेडियो अमन पर एक दम बेखी बल्कि से बता न आम चमाल खबर है तेरी को ले जो बिखी हर सनवाज मुकमल इस्तीफा और कुम सईदा वली छे एजुकेशन बारे की राजी हुई। एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तालीम दस हथियार, तालीम एक ऐसी हथियार है जिसको आप यूज करके पूरी दुनिया को आप बदल सकते हो, लेकिन अगर आपने कुछ किया तो ना पढ़ा तो फिर आपकी अपनी गलती। अच्छा नो जो बताऊ हम दबड़े ग्राम इसमें सुन खल के दी कम अज कम दोनों को दास लोवेल पक गया दीजिए और किस सतहबल इंट्रोडक्शन पे इंग्लिश की कवले शे हाँ नोनंदा से कहू चले अलग शांत कर सकता लाकुमत टूल नमक के जगह दे नमंग अखबल अमिता पे इंग्लिश की वायु मोम अमिता पे इंग्लिश के मंगे सवायु एम डबल ओ एम मोम मोमर थवायु मोम एम डबल ओ एम एम डबल ओ एम मोम और तवायु हाँ या वो तमंग मादर हम वायु सही था मादर एम ओ टी एच और मादर प्लार अबू अबू तमंग वायु फादर एफ ए टी एच ई आर फादर बाबा बाबा पापा डेट आगे बढ़ते। अच्छा अमी तमंग सवायु मोम या मादर अबू तो सवाई फादर या वर्त बाबा या पापा पी ए पापा आर फादर नन सिर्फ और सिर्फ मंगा द मादर फादर आओ अदे नहीं रावा से कम देनो हाँ कम जिस मंगा द रोरियान खोरियान दी अगली तो सिबलिंग वे लिखी सिबलिंग सिबलिंग वे लिखी एस आई बी एल आई एन जी सिबलिंग सिबलिंग बहन भाइयों को इंग्लिश में सिबलिंग्स कहते हैं। ओके क्या कहेंगे अम्मी को मॉम मादर और बाबा को फादर या पापा कहते हैं और सिबलिंग बहन भाइयों को क्या कहते हैं इंग्लिश में बहन भाइयों की इंग्लिश में क्या कहते हैं सिबलिंग भाई को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर बी आर ओ टी एच ई आर ब्रदर भाई भाई जान व्हाटएवर आप जो भी कहते हो। अच्छा सिस्टर को क्या कहते हैं सिस्टर को कहते हैं अपॉलॉजी सिस वो जो आपकी बहन है उसे कहते हैं सिस्टर एस आई एस टी ई आर सिस्टर। आज हमने क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि मादर माँ को कहते हैं इंग्लिश में फादर बाप को कहते हैं इंग्लिश में सिबलिंग बहन भाइयों सबको इकट्ठा जब हम कहते हैं तो हम इसके लिए यूज करते हैं सिबलिंग भाई को हम कहते हैं ब्रदर और बहन को हम सिस्टर। अच्छा बड़ी भाई को हम कहेंगे एल्डर ब्रदर ई एल डी ई आर एल्डर ब्रदर बड़े भैया अच्छा ओके सिवाय जब कोई बंदा कहते हैं जमा घट मशर और दान अगली दबर बता सिवाय एल्डर ब्रदर हा दादर रकूटी रोड मशर रोड पारा यो कस वाई जी जमा रकूटी रोड ने अगर वाई यंगर ब्रदर सब वाई यंगर ब्रदर।

0: क्या आप अपने बच्चे के रोशन, महफूज और कामयाब मुस्तकबिल के लिए बटग्राम में किसी मियारी तालीमी इदारे की तलाश में हैं? तो फिर आइए स्काईहॉक इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में, जहां तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं बल्कि किरदार साजी, अखलाकी तरबियत, एतिमाद और क़ियादत की तामीर भी हमारी अव्वलीन तरजीह है। नर्सरी से लेकर FSC तक मियारी इंग्लिश मीडियम तालीम, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स के बेहतरीन प्रोग्राम, काबिल और तजरीबाकार असातिज़ा इकराम, जदीद तदरीसी तरीक़ेकार, कंप्यूटर और साइंस की जदीद लेबोरेटरियां, पुरसकून और महफूज तालीमी माहौल, तलबा व तालिबात के लिए मियारी व महफूज ट्रांसपोर्ट की सहूलत, तालिबात के लिए कॉलेज सेक्शन में अलीहदा क्लासेस का इंतजाम। यहाँ निसाबी तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों, जहनी व जिस्मानी नशोनमा और अमली तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। अपने बच्चों के बेहतर तालीम व तरबियत के लिए कल नहीं आज ही तशरीफ लाइए स्काईहॉक इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम, जहां ख्वाबों को मिलती है कामयाबी की परवाज।
1: ग्रानो औरिदुन को तसो आवाज और रेडियो अमन 88.4 बटग्राम।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
6: रेडियो अमन नेटवर्क, मन राम।

की और उल्टे और जड़ कचा कचा की कल ना कल पके कबज अमराजी या दस्तुना कम तचे पेचस हुई दा अलामा चिकम दे कल चिदा तकलीफ दे तबे ब्लड की शामिल शी नुबियादा सिम्टम ते जाहिर शी उस मख की गुरु चिकला दा तब प ब्लड की मौजूदी प बदन की मौजूदी नु आया नूर दास से तकलीफात थी चेगा द इंसान प बरख की भी और इंसान ता मिलावेगी कमंगो गुरु दास मुंगला दीर ज्यात फैंद मैं दिराजी और मुंग तो चेरा अडू की मुख उगेगी खुराक गई तमजड़े निकीगी जमुंग से हाथ मख की टिको खुदा मुंग बाने बता बरातला दागे पवाजे चिकम देनु पर मुंग बाने दा चलो शुची जमुंगा रोटे अजड़ते निकीगी पंडेम खुगी मलाम खुगी सरम खुगी और वरसरा वरसरा वेख्त हम जमुंगा गुरजीगी मंग देर ज्याद तेलुना वगैरह इस्तेमाल कर वेख्त चिकम दे दटी केदू नुम नाखली कमैदे तो गुरु नुमैदम उमगा सिदा कनूर जिसम बदन

भैया शर तुम गलते क्यों मैं गप न लगावे दे सर माते हो चा मैसेज कड़े हो का ना दी धीर ना नो टिकटॉक पलार माते भी जमा वालिद से भी वो काले जेल तेर को मा और ते वाले वे बस कूर के जमा मोर प्लार वान शिव गपे लगाओ वे जमा वालिद से बस दक सी दसी पंडोस वाने वो विदा सी जरावा चाव का ना नो अगला जमा दे मोर पे दे जलो वो लगे दुई अगा बस सड़शुआ वे ब्या पुलिस रागले वालिद से भी जमा बोत नो वालिद से भी जमा उसम खप दे दा बस गप नहीं का ना दा बे सड़ी ता डेर नुकसान हो रसी नो गप न दे पकार खास कर अगर वही कहना भी गुजार रोजा न लेरी नो कोशिश करो टोपक शो गटा शो पंडोश शो से सोमश लगाना इंसान देर नाजक थे नो ब्याह का देर ज्यादा खपो हुए हो बस अगर कार ब्याह शो व्यार रज़ी कबर ते नाचती बस चे तंग शी लगा नो जब बताओ वे मचे ख्याल कोल पकार दी।